0: लोग जगत दे विच ऐसे माड़े कर्म करनगे जिदे नाल दूजे का बुरा होवे नुकसान होवे। इस तरह संसार दे जीव मंद बुद्धि कारण पुठे कम्मां दे विच पैणगे, पर मेरा सिख इस पासे दी चाहना ना करेगा।
1: एक समय मंत्री बहुत घर घर बाजै बाज।
0: एक समा आवेगा जदों मंत्रां दे सिद्ध करन वाले मंत्र धागे तवीत मंत्र जंतर करन वाले घर घर बाजा बजेगा इन्हां दा बुरा हाल। आपां पटियाले जी बैठे हैं, बाकी शहरां दी खबर नहीं है आपां नूं। ये बॉम्बे कलकत्ते दिल्ली इन्ना पुठा काम है, लोग रोंदे ने उत्थे चीका मार मार के। बॉम्बे की संगत तो यह कहती है भी गुरबाणी च कोई ताकत ही है नहीं। उन्होंने तो सीधा ही यह नकारा ही करता सब कुछ इत्थे आके, भाई बाणी च कोई ताकत नहीं है। इन्नी बाणी पढ़ते हैं साडे घरां च ऐ चलदा करदा कोई। सो इस करके उत्थे जाके जदों यह कहीदा भी जे दसवें पातशाह ने इउं करना हुंदा श्री साहब क्यों महाराज लैंदे, जंग शस्त्रां नाल ही करके क्यों दिखाउंदे, क्योंकि दुश्मन का टाकरा सिर्फ शस्त्र ही कर सकते ने। हुक्म नहीं है आपां नूं करामात दिखाउण दा। सतगुरु कहिंदे जे मैं चाहां इको फूक दे नाल तुरक सारे साड़ दिया, एक वचन नाल मार दिया, पर यह दुष्टां नूं शस्त्रां नाल कटना है, दैंतां नूं मारना है। इसे प्रकार ये जिहड़ियां नापाक शक्तियां ने इन्हां नूं कटण वास्ते दसम की बाणी है। ताइयों महाराज ने दसम ग्रंथ की बाणी जिन्हें भी जाप साहब के पाठ हो जाण, चौबी साहब के वध तों वध पाठ हो जाण, इसे करके तो महाराज ने यह चौबी साहब के पाठ विच इन्ना कुछ कहा कि चुन चुन सत्र हमारे मारी है। जिहड़े लोग किंतु करते ने चौबी साहब से, समा आ जाएगा जब तुसी खुद ही कहोगे हां भी चौबी साहब का पाठ जरूर करो, क्योंकि इहदी जरूरत पै जानी है। जाप साहब की बाणी फिर इसे प्रकार आईयों सतगुरु महाराज ने आपां नूं गुरबाणी बख्शिश की। जपजी साहब, जाप साहब, सवैये चौबी साहब, आनंद साहब का पाठ, सो इहदे विच भी बहुत विचार वालियां चीजां ने जिहड़ियां मौके मौके ते आपां नाल नाल विचारांगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब 84 लाख जून दे मालक ने, इन्हां नूं सारे ही मत्था टेकदे ने। सो इस करके जदों दुश्मन नूं कट्टणा हुंदा, खास करके उदों फिर जदों दा पापां नूं कट्टणा उदों बाणी पढ़ी जांदी है। जदों ऐसियां भैड़ियां आत्मावां नाल टाकरा पैंदा उदों दसम दी बाणी पढ़दे आ, उन्हां नूं चीजां नूं नाश करदे आ। इस तरह महाराज जी ने आपां नूं गुरां दी बाणी, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी, दसम दी बाणी ताइयों खालसे नूं बख्शी।

याद रखा करो प्रभु का सिमरन गर्भ ना बस है प्रभु का सिमरन दूध जामा गुरु तो झूठे पीने गुरु को झूठे ना कहो एक बचन कह के समाप्ति करूंगा तान गुरु ग्रंथ साहब की कहते रे एक बार नोट करो रेजी नलज रेजी नलज की कहते वैशाखन वेरलो के डर मिठा बोलता सतगुरु पर आ बचन इतने आन के क्या रेजी नलज लाज तो है नहीं ये नलज वैशाखन जीव ते में शर्म नहीं होती आखिर की गलती होगी इधर गुरु दास सिख को कबरा के मथे टेकन ले हर ताज करत हर ताज करमन छट के इनू छट के पत कानून ते जाई होर नवल तुरिया जाना है ते फिर दृढ़ करवाया कहते नाले तू कहना हमरा ठाकुर सब ते उच्चा कहता नहीं तू कहते सब ते उच्चा तेरा ठाकुर ते फिर उन्हें कोल की लैन जाना है जे जीवना तेरा ठाकुर ते मरिया कोल की लैन जाना है सतनाम श्री ये गल ते गुरबाणी का वचन के जीवते को जीवता मिले बोलो जी इतना लिखा कि मैं जीवते को मुए को मरे को मरिया मिलता है जीवते को जीवदा मिलता है तुरदे को तुरदा मिलता है उड़दे को उड़दा मिलता है ते जेड़े फिर मरिया दी कबरां दे उत्ते चले गए फिर वो जीवदे थोड़े ने मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी कहते रहे वो तेन शर्म आनी चाहिए जीव तू धन गुरु ग्रंथ साहब वर्गा ठाकुर छड़ के इधर उधर धागा कवीतर चक्कर च ना पे गुरुद्वारे आया कर गुरु द्वार गुरु द्वारे हुए सोची पाई सी बोलो गुरु द्वारे हुए सोची गुरु द्वारे आया कर वे कहते किसी में कोई धागा नहीं मिलता कोई प्रीत नहीं मिलता इतने इको ही दवाई मिलती है सर्व रोग का बड़ा मिठाई गुरबाणी के बच्चे लिखा है हर बिन कछु न लागे बोलो हर बिन सारे बोलोगे हर बिन भगतन को मीठा भगतन को मीठा कोई गल दुनिया की कोई लक्चर कोई विचार संत जना नु चंगा नहीं लगता एक रब की बंदगी तो बिना हर बिन कछु न लागे भगतन को मीठा अगे लिखिया आन स्वाद सब फिक्या बोलो आन तार कितना पता लगा गुरु अर्जन देव साहब ने कर निर्णय ढीठा कर निर्णय करके गुरु ग्रंथ साहब किन्ने ने देखा है कि वाहेगुरु शब्द जिहड़ा कोई शब्द दुनिया ते मिठा नहीं जिन्हां दे अंदर रस वग पिया जिन्हां नूं नाम दा रस आ गया मेरे सतगुरु पातशाह जी किन्ना प्यारा वचन मेरे कान विच इन्ना क्या दो चार मिनट हो गए एक बार आपको सतनाम श्री वाहेगुरु जे तुसी अकागरता बख्शो ते धन गुरु अमरदास महाराज जी आ रचना जिहड़ी पनीर खांदी दुध पींदी जूस पींदी तरह तरह के खाने खांदी आ उहनूं रचना नूं खातम होके क्या ए रचना पहलो ए कहो हां ए रचना गल करो इहदे नाल ए तुम अनरस राज रही जेड़ा रास्ते नूं गुरु ने दसिया आखो सतनाम श्री वाहेगुरु कहते हर रस हर नाम हर रस भोगो हर नाम हर रस ये रसना तू को वाहेगुरु की गल छड के चुगलियां बड़ियां कर दी क्यों नहीं करते हैं आखो सतनाम श्री बोलो ना संगत साहब विच बैठे हो एक बार सच ता बोलो चुगलियां कर देना आपां करदे एक गल हुण गुरबाणी का फैसला सुन दे भी चुगल ते निंदक की मौत ते कराउंदी चुगल ते निंदा करन वाला पहलो जे हुण तुहानू इह गल दस दित्ती जावे ते हो सकदा है तुसी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं बेनती करो महाराज मेरी रसना चुगली ना करी बाणी विच लिखिया वचन है कि जिहड़ा चुगली करदा है ते निंदिया करदा ओह रुल के मरदा रुल के ओहदी पछाण नहीं लैंदा कोई पाणी नहीं पिउंदा ओहदी किरिया नहीं कोई समझदा
ਸਭ ਗੰਦ ਉਹਦਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰੁੜ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਰੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨੀ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੀ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੀ ਕੋਈ ਸਾਂਭਦਾ, ਸਭ ਗੰਦ ਉਹਦਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਚੁਗਲ ਨਿੰਦਕ ਭੁੱਖੇ ਰੁੜ ਹੋਏ, ਚੁਗਲ ਨਿੰਦਕ ਭੁੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਥਾਉ ਪਾਏ, ਹੱਥ ਹੀ ਨੀ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਕਚਰ ਜਾਣ ਲਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਣ ਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸ ਪੀਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦਾ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੇ, ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨੀ ਬੁਝਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ

0: सतगुरु कहिंदे कर हर माला टिंड परोलो। ध्यान दिओ जी, जग दीआं रूहां एकाग्रता बख्शियो। कहिंदे आ जिहड़े सवास आ इन्हां नूं आ बजुर्गां ने वेख्या खूह वगदे सी, खूह आखो वाहिगुरु वाहिगुरु
1: वाहिगुरु।
0: खूहां दे विच इक चीज पानी भरन नूं जिहड़ी वगदी सी उहनूं कहिंदे
2: टिंड
0: माल, ते जिहड़ियां माल दे उत्ते हुंदियां सी उहनूं कहिंदे टिंडां। उहनूं टिंडां कहिंदे। कर हर ट इक खूह बणा, आ जिहड़े सवास ने तेरे इहनां नूं माला बना के माल बना के एक एक सवास नूं टिंडा बना। महाराज इस माल नूं खिचे कौन? एकाग्रता बख्शे इस माल नूं, तू आए नूं खिचे कौन? कहिंदे इस पीतर मन योग सरवण कीता, इस पीतर बलदा दी जगह ते इहनूं खिचण नूं किहनूं योग? हां मन जोड़ो, जो का मतलब जोड़ दो, जो दो आप कहने बलद जोड़ दिते। ए खूह दिया माला टिंडा खिंचन लई मन बलद बनाओ। मन तो साडा सिमरन करदिया भी दौड़दा रहिंदा है। साहब कहिंदे ने तू मन नूं जोड़ के इन्हां टिंडा नूं खिंच, ते अगे जाके कहिंदे अमृत सिंचो, अमृत सिंचो, अमृत भरो क्यारे। बोलना अमृत सिंचो भरो क्यारे, क्यारे क्यारे। जेडे खेती बाड़ी करते उन्हां नूं पता है एक छोटिया छोटिया मट्टां पा के खेत दे विच की पा दी दे। खेती बाड़ी करते तुहानूं पता, पिंडां दे रहिण वाले खेती बाड़ी करन वाले पता क्यारे पा दी दे। साहिब कहिंदे ने अंदरों मन नूं जो के आ जिहड़ी सवासां दी टिंडां दी माला इहदे राहीं मन नूं जोड़ के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु करके क्यारे भर क्यारे क्यारे तेरे सुनिए ने सुख रहे। ते मैं धन गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी पुछिया, महाराज शरीर ते केड़े क्यारे ने? आखो सतनाम श्री बोलो सतनाम। खेतां विच ते क्यारे हुंदे, इत्थे क्यारे केड़े? कहिंदे अखां नाम जपण वाले दीआं अमृत नाल भर जांदियां, अंदरों आना के अमृत अखा जो अमृत बोलने लग पा। तो सतनाम श्री पढ़ते नहीं, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट बोलो, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट। ब्रह्म ज्ञानी इना सिमरन अंदरों जुड़ के करता, ओदिया दृष्टि चो अमृत बोलने लग पा। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी बरसन लग पा है। फिर आखिर महाराज होर कि क्यारा भरीये? महाराज कहते रसना अमृत नाल भर जी गल कर लगता वा। ते कहते फलाना बंदा भजन करता मुंह चो अमृत डोलता। नाम जपण वाले की रसना कदी फिका नहीं बोलती, नाम जपण वाले की रसना सदा मिठा बोलती अमृत वर्गा। साहब कहते ने मन नूं जो इस सवासा की माला अपना, मगर ए जे बरतना होया जे मन नूं तू ना विच जोता, सिमरन विच मन नूं ना जोड़िया, ते टिंडा दी माला चलनी नहीं, थल्यो अमृत आउणा नहीं। ओ इतना है गुरसिखा प्यारिया सारी रात लगा रहेगा बनना कोई नहीं। मन नूं विच जोड़ना जरूरी है। अमृत सिंचो भरो क्यारे, ते अगे लिखे तो माली के ओ तो गज के बोलो ना तो

मान दय मेरो संपत रत धन राज सिंह अद नी लगाए काल फास जब कर करी सब भयो करायो जान बूझ के बावरे तै काज जगारियो पाप करत सुखच्यो नहीं ने कर बनवारियो जे विद गुर उपदेश आसो सुन रे भाई जे विद गुर उपदेश ध्यान दियो जे विद गुर उपदेश आसो सुन रे भाई नानक कहत पुकार के नानक कहत पुकार के कहो प्रभ शरण आई कहो प्रभ शरण आई नानक कहत पुकार के नानक कहत पुकार के नानक कहत पुकार के कहो प्रभ शरण आई कहो प्रभ शरण आई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु जी का खालसा।

तरला पाओ तरला। जरा शरीर विचो चा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नू कह रही हां महाराज मेनू विछड़ी नू मेल लो।

आख्या लाल नहीं दे के आया। कह लगा महाराज पातशाह, उन्हें आख्या लाल की कोई कीमत नहीं, ये लाल बहुत कीमती है, मेरे वर्गे कई दुकानदार मिलके भी यह लाल नहीं ले सकते, यह बड़ा सत्ता पातशाहियां की कीमत का एक लाल दसे। आ अमेरिका जिड़ा देश है ना, एडे एडे सात देशों नू वेच दियो किसे अगे ते जिनी दौलत बनती एक लाल की कीमत लिखिया इतना बनती जनसाखी विच, सात पातशाहियां वेच दिए एक लाल की कीमत बनती है। ते सालसराय ने आख्या महाराज मैं ये भेटा दिती है, मत्था टेकिया वा, मैं मुल नहीं लिया। ते मरदाने ने जदों ये गल आखी जाके गुरु नानक पातशाह नूं, ते फिर सतगुरु दे कोल जदों सालसराय जोरी आया ते महाराज पातशाह नूं मां महाराज कहण लगे सालसराय ये तू 101 रुपया दिता लाल नहीं रखिया, महाराज इस लाल की कीमत बहुत आ, ते मेरे कोल एडी भेटा नहीं, मैं ते मत्था टेकिया वा। ते धन गुरु नानक पातशाह ने जेडे ओनू वचन कहे सी ना जन्म साखी दे विच, आखो सतनाम श्री सतगुरु पातशाह कहन लगे सालसराए ए ते एक पत्थर दा टोटा है, जेदी तू एनी कीमत पाउनी दसदा है एक पत्थर दा है, एदे तो भी एक कीमती लाल है तेरे कोल, जे संभाल सके ते संभाल। एक बार गाओ जरा अपना।

एक मिनट लई शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। ए नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सां, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नूं जगत विच जगया जिहदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण होआ। मगर जे असीं अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया है। उसे तरह वर्त रखदे आं, उसे तरह श्राद्ध करवाउने आं, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आं, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आं, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आं। साडे घरां दे विच्चों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

0: आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गज के आख्या करो तुहाडे परिवार दा भला, तुहाडे जीवन दा भला, पंथ दा भला। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। तरला है ऐरकां दे प्रचार दे विच ते बहुता तरला पाउण दी हुण जरूरत है, क्योंकि नेहरियां बहुतियां आ गईयां। एक पंछी आ सिख पंथ जिहड़ा है ना, एक पंछी लिखिया गुरबाणी दे विच, सरवर पंखी हेकड़ो। बोलो सरवर पंखी। सरवर दा पता है सरोवर। कहिंदे सरोवर दे कंडे उत्ते, इस दुनिया दे सरोवर दे कंडे उत्ते सिख पंथ रूपी एक पंछी है आण के बैठा, शुद्ध मोती चुनने वाला। सरवर पंखी हेकड़ो ते फाई वाल पचास। इनू फाइया लैके जेडे फंड वाले ने, ओ मेरे सतगुरु ने लिखिया वा पंजा ने, लाख अहेरी एक जियो। इथे आख्या लखा शिकारी ने मगर एक सिखिया, केता बंचू काल किन्ना क चिर बचूंगा इन्हां दे कोलों। जे तुसी सुचेत ना होए, जे अपनी कौम ना जागी, जे गुरु दे सिखो तुसी एक एक बच्ची बच्चे ने अपना फर्ज ना पछाणिया, ते मैं गुरु दी हजूरी च कह रहा इनू खतरा ते कोई नहीं, इन्हें मिटना ते संसार विचों है नहीं, मगर नुकसान बहुत हो जूगा। आने वाली सदियां तक घाटा पूरा नहीं होगा, अंधेरिया आ गई जे बहुतियां, ते सुचेत हो जाओ, उठो अमृत वेले, इन्हां तो बचोगे कि तरह। हुण हर बंदा पुछदा जी बचा की है, जे पंथ नूं खतरे चार छपेरे पै गए ते इहदा बचा की है। इको ही बचा वा कि तुसी सिमरन अभ्यासी बन जाओ। तत्ती वाओ ना लगे ही कदों, जदों पार ब्रह्म शरण आई। इहदी शरण विच आ जाओ। सिखो साडे दुश्मन भी तां बने ने, असीं तां अज तक नुकसान विच गए हां, असीं भी गुरु नानक दा पल्ला छड़ दिंदा। ते आपां जदों मरदाने ने वेख्या महाराज इनिया अनेरिया आ रही ने उड़ा के लै जाणगिया, वेखो लाल अनेरी आउंदी मूह अड्डी, पता नहीं किन्ने राक्षस विच तुरे आउंदे ने। ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह कहण लगे मरदानिया इह अनेरी तेरा कुछ नहीं वगाड़ूगी। आख्या मारक इनी अग दी अनेरी आ रही उड़ा के लै जू, मरदानिया कुछ नहीं कहूगी तेरे मुंह चो जे ना रुकिया सतनाम श्री। जे वाहेगुरु ना रुकिया ते अनेरिया तेन कुछ नहीं कहणगी। मेरी हाथ जोड़ के पंथ नूं बेनती, तुसी पंथ रूप विच बैठे हो ते मैं इस गुरु नानक दे घर दा टुकड़ खाण वाला कुत्ता तुहानूं पहलों सचेत कर रहा। जे हालात तो बचना है ते नितनेमी बन जाओ। जे हालात तो आउण वालियां ने, कई बंदे सोचदे कई नहीं सोचदे, कई कहिंदे खाणा पीणा हसना सौणा बस इन्ना कुछ ही है, मगर थोड़ा जिहा सचेत हो जाओ। कोई धरती की विपता नहीं जे जिहड़ी इस वेले पंथ दे दुआले नहीं होई। मेरी हाथ जोड़ के बेनती, जे सारियां मुसीबतां तो बचना वा, जाको मुश्किल अत बने ढोई कोए ना, दे लागू होए दुश्मना साक भी भज खले। इथो तक होर मुश्किल की बन सकती है कि अमेरिका की सब तो वड्डी एजेंसी जिन्हों CIA कहिंदे हो, उन्हें भी लिख दिता है कि सब तो दुनिया की नामराद बीमारी जिहड़ी एड्स है ना, यह सिखा तो फैली। यह छोटा जिहा दोष नहीं जिहड़ा तुहाडे ते लगा है, ये दुनिया च बदनाम करनू केवल इको ही दोष बड़ा है। तुहानू नफरत करनगे हवाई अड्डे खलोते लोकी, तुहाडे कोल बह के राजी नहीं होणगे लोकी, जो उन्होंने अखबार विच लिख दिता है कि दुनिया की सब तो भयानक बीमारी जिहड़ी एड्स आ जिहदा कोई इलाज ही नहीं, यह सिखा तो फैली। गुरमुखो इहदे तो बचना कितना है। सच्चे मार्ग चलदिआं उस्तत करे, सच्चे मार्ग उत्ते आ जाओ। दुनिया के अखां विच घट्टा पा दूगा मेरा गुरु नानक, सारे तुहानू सज्जण समझण लग पैणगे, सानू गुरमुख समझ लग पे। मगर साडे चेहरे तो हुण गुरमुखताई लभदी नहीं, साडे चेहरे तो नितनेम लभदा नहीं, साडे चेहरे तो नजर नहीं आउंदा सतनाम श्री वाहिगुरु दा सिमरन। मेरी हाथ जोड़ के आप जी नूं बेनती है, कौमां जीवन दे विच ओही सफल हुंदियां ने जिहड़ियां अपने मुढ नाल जुड़ियां रहिंदियां ने। मेरा सतगुरु कृपा करे, रहमत करे, बचन दा करन नूं बहुत दिल करदा फेर सही। साहिब जी कहिंदे काली जिन्नी ना रावया, बोलो काली जिन्हां ने काले वालां विच परमेश्वर नूं नहीं पाया, धौली रावे कोए, धौली रावे। बाबा फरीद जी कहिंदे धौली दे विच ते फिर किसे ही रावया है ना, जिन्हां ने काले विच काले वालां विच जदों भज सकदा, बह सकदा, उठ सकदा, नाम जप सकदा है, जे उदों परमेश्वर दी बंदगी नहीं कीती ते धौलियां दे विच ते कदों परमेश्वर मिलने लगा है। हां जी
1: कल साई स्यों पिरहड़ी रंग नवेला होए।
0: बाबा फरीद जी सचेत कर रहे ना, वैसे कहिंदे पिरहड़ी हुंदा प्रेम, कर साई स्यों पिरहड़ी। फरीदा उस मालक नाल प्रेम कर, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਨੋਖਾ ਤਾਜ਼ਾਪਨ ਦਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀ ਰਾਵਿਆ ਧੌਲੀ ਵਿਚ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਈ ਨਾਲ ਬਿਰਹੜੀ ਕਰ, ਪਿਆਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ,
1: ਮਹੱਲਾ

बोले मैं मूरख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। बड़ा निम्रता दा शब्द जे, कोट पराधी तरियारे। मैं मूरख की केतक बात है।

वो पूर्ण पुरख विधाता है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पिता जी जेडे तुहाडे पिता जी मेरे पिता जी ने ना सारे अपने पिता जी कौन ने धन गुरु जिदन अमृत छकाया से की आख्या सी अज तो तुहाडे पिता जी कौन ने धन गुरु गोबिंद सिंह साहब। एक घर विच लेटे पैसा गुरसिख प्यारे पंज प्यारे साहबान नाल अमृत छका के आए ते कोई बचन करदा सी इधर उधर दे विच तीसरा बंदा जिहड़ा विच सुत्ता सी ते उस कमरे दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह साहब की एक ऐसी तस्वीर लगी सी तुसी भी कई बार वेखी हो। सतगुरु ने हाथ विच कागज फड़िया है ते मोर दे खंब नाल कुछ लिख रहे ने। तस्वीर वेखी होगी गुरु गोबिंद सिंह साहब की नवी छपी दीवार दे उत्ते। एक जाना कहिंदा भाई गुरमुखा प्यारिया इधर उधर दीआं गल्लां ना कर वेख ला लिख रहा ई एक एक गल साडी लिख रहा ई। ते दूसरा बंदगी दे विच रत्या कहिंदा कीवता लिख रहा के लिखे ही जेड़े पिछले उन्हां दे कांडे मार रहा ध्यान दिओ जेड़े पिछे लिखे सी उन्हां दे उत्ते कांटे मार रहा है कि लै गुरमुखा प्यारिया तू सतगुरु गरीब नवाज पातशाह दा अमृत संचार करा के इनिया रूहां नूं गुरु दे नाल चढ़ा के आयो जे कोई पिछला कुकर्म माड़ा होया भी आ ते पूर्ण पुरख विधाता विधाता हुंदा लेख लिखण वाला वह आपे लिख सकदा वा ते आपे ही मेट सकदा है। आ हुण जिदण मैं आया ना एले तो ते एक मेरे तो अगे खलोता सी इमीग्रेशन दे अगे वह चैकिंग करदे ने अजकल जिहड़े विजिटर वीजे दे आउंदे उहनां नूं ओ इंट्री देन वाले ने गुरमुख प्यारे ओ पहलो ओनू एक महीने की इंट्री दी बड़ा हौसला बजा इस वचन दे विचो आखो सतनाम श्री वाहे। नहीं तो कई बार सोचते हुंदे हां भी जो परमेश्वर ने लिख दिता एक बार ओनू मिटिया नहीं जा सकता मगर इस वचन ने एक नवा अंदर बीज पैदा किया जदों उन्हें इंट्री एक महीने की ला के काला जिहड़ा बैठा सी इमीग्रेशन अफसर उत्ते अपने सैन कर भी दिते ते फिर दोबारा ओनू पुछदा तू किन्ना चिर रहना ध्यान दिओ तू इत्थे किन्ना चिर रहना है अकागरता बख्श समझ आ रही ना ते उन्हें आख्या जी मैं जुलाई तक रहना है। अपने हथी मोर लाई आपे लिखिया ते आपे उस मोर नू कट के अपने सैना नू कट के ते जुलाई तक करके ते उत्ते सैन कर दिते। मैं आख्या वाह तू ते हाली किसे दा नौकर है ते तू अपने लिखे नू कट के उत्ते सैन करके एक दे चार कर सकदा वा ते जिहड़ा आप मालिक आ सृष्टी दा ओ जो मर्जी लिख सकदा ते जो मर्जी मेड सकदा है नवे लेख लिख सकदा है। इस करके एक बार आखो पूर्ण पुरख विधाता पूर्ण पुरख विधाता पूर्ण एक बार नीले दे घोड़े दे उत्ते सवा सत फुट उच्चा कद चिट्टी हीरियां नाल मड़ी कलगी हाथ उत्ते चिट्टा बाज नीला बाणा चिट्टा दस्तारा ते मेरे सतगुरु का पावन स्वरूप अपने नेत्रां विच कल्पत करके गुर

मेरा सच साहेब मेरा नानक बोले बुलाया तेरा धन गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी नानक बोले

चलो शायद मैं इस पासे ना जावा, मेरे साहब ने कहा कि तू बहुत वड्डा विद्वान है। कहिंदा जी मैं अरबी फारसी का विद्वान हाँ। मेरे साहब ने जो हसे तो मेरे साहब कहिंदे मैनू हासा इस करके आया ही नंद लाल, भांडा सोहना बड़ा लग्या है मगर जो लागे आया तो विचों बो बड़ी आई, विचों का दी अहंकार दी। मैं विद्वान हाँ। एक गल गुरबाणी दे विच नोट करियो, क्या पढ़िए क्या गुणिए, गुणिए गुणना विचारवान भी हो जाना, पढ़ाई कर लेनी वखरी गल आ, ओदी विचारवान हो जाना वखरा गल आ, मगर तीसरी अवस्था क्या पढ़े जिस भांडे चो बवादी आ, ते आप ही पहले जामे चो कहिंदे सो भांडा आत्मलीन धोता हच्छा ना होए सी, ए ते दुआरे धोए हच्छा। तुसी आप ही कहा सी जे आत्मलीन भांडा होवे ते गुरुद्वारे लै आयो भांडा धुपजू, ते तुसी फिर धो दियो, ते इतिहास दे पन्ने पढ़ के वेखो फिर मेरे सतगुरु ने की कहा सी ओनू। अज वाला विद्वान कहिंदा है कदी कहिंदा जोड़े झाड़ने मिट्टी आ, कदी कहिंदा सिमरन करना पखांडी आ, कदी कहिंदा कुछ आ, कदी कहिंदा कुछ आ, कदी पुछो गुरु नानक पातशाह दी दसवीं जोत नूं जिन्हें भाई नंद लाल साहब ने हाथ जोड़ के आख्या मेरे साहबा जे भांडा आत्म लीने आ ते तेरे तो बिना होर धोण वाला चंगा केड़ा वा, धो दे। ते फिर मेरे साहब ने आख्या सी जा हां हुण शाही लिबास ला दे। उदन फिर मेरे सतगुरु गरीब नवाज ने इतना बाहवां कीतियां सी ते आख्या आ आनंद लाल हुण मेरे कलेजे नाल लग जा, तेरे ते मेरे विच कोई भेद नहीं रहा, भेद सी ते केवल तेरी होमे दा। अज मेरा गुरु नानक पातशाह कृपा करे सिख दे अंदरों होमे खत्म हो जाए, होमे होमे नावे नाल विरोध है। जेड़ा सिख अमृत वेले उठ के नितनेम नहीं करदा की ओनू सिख समझदे हो? क्यों जी? जेड़ा बंदा अमृत वेले दी संभाल नहीं करदा, जेड़ा बंदा गुरु दे कह दे उत्ते प्रभ के सिमरन गर्भ न बसे, प्रभ के सिमरन दुख जम नसे, प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नौ निध, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभु दे सिमरन दे उत्ते ही विश्वास नहीं करदा कि ओ सिखिया। गुरु दे सिखो एदे घर ते आण के डिग के ए कहना है मेरे सतगुरु हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चाले गुर चाली, सतगुर दया करे सुख दाता हम लावे आपन पाली। हे गरीब नवाज हम अज्ञान अल्प मत थोरी, हे मेरे सतगुरु असी अज्ञानी थोड़ी मत दे जीवियां, साडे ते कृपा कर सानू समत बख्शे। इस घर दे फैसले सुनी दे ने, इस घर ते फैसले थोपी दे नहीं, इस घर दे नाल जुड़ी दा है, इस घर ते आण के आखीदा तू समरथ वड्डा मेरी मत थोड़ी राम। मगर अज जिहड़ा दो किताबां पढ़ लैंदा कहिंदा नहीं मेरी मत ज्यादा है। गुरु घर विच विद्वान पैदा होण, भाई गुरदास जी वर्गे विद्वान पैदा होए ने, भाई वीर सिंह साहब वर्गे विद्वान पैदा होए ने, होर कई गुरमुख प्यारियां रूहां इस घर विच विद्वान पैदा होईआं है, मगर गुरमुख प्यारियो ओ विद्वता गुरु तो उच्ची नहीं, अपने आप नूं नीवां करके रखना है। ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह ने भाई नंद लाल कोलों जूठे बर्तन साफ करवाए। इतिहास दे पन्नियां विच आउंदा है मेरे सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह आप सिखां दे जोड़े साफ करदे रहे। आओ आपां वी उस रस्ते नूं अडाप्ट करिए, आपां वी उस रस्ते ते गुरसिख मीत गुरु दी चाल उत्ते चलिए। अज साडे कोलों गुरु दी चाल, आ कुर्सियां ते बह के लंगर खाना सी ना जिहड़ा, आपां गुरु दी चाल तो भटक गए। जे गुरु दी चाल, हर चाल गुरु दी उत्ते चलिए, जो गुर कहे सोई भल मानो हर हर कथा निराली। एक कथा निराली जड़ी आ गुरु दे कहे हुए बचन, मेरे सतगुरु कृपा करे सिख नूं कमाउणे आ जाण। अज मन विच सोच रहा सां एक बार आखो सतनाम श्री। 1978 तों बाद गुरु दे सिखो गुरु नानक दे घर दे टुकड़ खाना वा दर्द ते आउंदा ही आ। 1978 तों बाद इस कौम दे पैर नहीं लग रहे, नित कोई ना कोई ढेंदी कला दी खबर सुनदे। 1978 तों बाद कोई भी एहो जिहा दिन नहीं आया जिदन मेरी कौम ने कोई चढ़दी कला दी गल कीती होवे कि कौम कट्ठी हो गई आ, इस कौम नूं सतगुरु गरीब नवाज ने आ कर दिता है, इन्हां कट्ठे बह के आ गुरमता कर लिया। आ थोड़ी ठंड कल पई आ, जिहड़ा नरेंद्र गरेवाल दे बरखलाफ 10,000 प्राणी इकदम खड़ा हो गया। मेरा सतगुरु कृपा करे मेरी कौम सचेत होवे, जिथे वेखे के गुरु पंथ तो उल्ट कोई जा रहा है सिख सिख दे उदो ए ना सोचे कि मैं इस धड़े दा वां। पहली गल ते धड़ा सिखी विच है ही नहीं। आखो सतनाम श्री। धड़े दा काम सिखी विच

सचेत हो सतगुरु गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी दे कि जे तेरी गठड़ी दे विच गुण होए जे तेरी गठड़ी दे विच परम पिता परमेश्वर दी बख्शी रहत होई ते परमेश्वर आप तेनू कहूगा आ खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हूं करू आ प्यार नाल आण के दोवें बाहां पहाड़ पहाड़ जिहड़ियां भारी भजान के भारी भरोसो वड्डियां बाहां वाला बापू आखूगा खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की मगरों तां आखूगा जे तू गुणा दी मालक होएगी ते औगण वाली नूं ते मेरे साहब कहिंदे मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों धन छेजे जाए मेरे साहब कहिंदे ने औगण यारी कंत न पावे बोलो औगण यारी सारे बोलो जरा औगण यारी मन की खोटी खोट कमावे मन की खोटी औगण यारी उस मालक नु चंगी लगदी नहीं मन दी खोटी खोट कर दिया फिर का सावना जाने मूड़ा अंदरों पिरदा सा उहदा सुभा नु इहने जाणिया ही नहीं कि मेरा पति ते उहना नाल प्यार करदा जिहड़ियां गुणवंती ने जिहड़ियां गुणां दीआं मालक ने ते आपां इस करके गुरमुख प्यारिओ मेरे सतगुरु दे चरणां विच बेनती करनी आ कि आपां नूं सतगुरु गरीब नवाज जी कृपा करो निर्गुण यारे गुण नानके निर्गुण यारे गुण नानके हे मेरे सतगुरु गरीब नवाज मैं निर्गुण यारा वां मेरी झोली दे विच गुणां दी दात पा जेड़े गुणां दा जेड़ी रहत जेड़े नाम सिमरन बंदगी जेड़े जीवन दा सदका मेरा ते तेरा विछड़े दा मिलाप हो जाए।

0: सतगुर पास पूरे सतगुर पास पूरे
1: सतगुर पास सतगुर पास
0: जी पूरे सतगुर पास पूरे सतगुर पास पूरे
1: सतगुर पास पूरे सतगुर पास
0: ओए नमाणी तै पवा नमाणी होके नमाणी आखा अपने आप नू महाराज मैं नमाणिया मेरा कोई मान नहीं साची लेवे बिन ए नमाणिया दे महाराज तेरे चरणा विच टैगी आणके इनू शब्द बख्शे शब्द लाग सवारिया इनू शब्द दे नाल जोड़ दे जिदे नाल एदा जीवन सवर जावे ते बाबा फरीद जी कहिंदे ने मैं ते भुलिया रहा कि जे किते तै पिया नीवा हो गया धरती ते मत्था टेकिया खुदा नू नमस्कार कीती किते मेरी चिट्टी पग ना मैली होए मैं भुलावा पग दा बोलो मैं भुलावा
1: पग दा
0: मैं भुलावा पग दा मत मैली होए बहुतिया नू सानू ए ही रहिंदा जिन्हू किसे नू कह के वेख लो जी जूठे बर्तन साफ करियो कहिंदे जी करन नू जी ते करदा कपड़िया ते छिट्टा पैंदियां एक गुरु दा सिख आनंदपुर साहब एरकां दसंबर दे विच आनंदपुर साहब सतगुरु गरीब नवाज दे चरणा च जाण दा मौका मिलिया धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की चरण छो प्राप्त की पावन धरनी नू करोड़ करोड़ करोड़ करोड़ करोड़ जन्म करके नमस्कार जिथो सखी का जीवन आपां नू खालसा ही जीवन मिलिया उथे बाबा लाभ सिंह साहब दे बाबा सेवा सिंह साहब दे लंगर विच एक गुरु का सिख बड़े सुंदर कपड़े पाए ते हर गुरसिख की आण के थाली चुक के ते थालियां चुक के साफ करदा फिरे एक सब्जी का छिट्टा उठिया ते ओदे सुंदर चिट्टे चोले दे उत्ते पै गया आखो सतनाम श्री नहीं गज के आख्या करो वजन बड़ा कीमती आ आपां हौली उदों बोलदे आ जदों गैर हाजिर हुंदे जुड़ के आखो सतनाम श्री सब्जी दा चिट्टा पै गया चिट्टे चोले दे उत्ते ते किसे ने लागों आवाज दित्ती गुरु दे सिखा तेरे चिट्टे चोले ते चिट्टा पै गया दाग कहिंदा सज्जणा ओ जिहड़ा मेरा बापू आ ना वेखण वाला ओनू पता वा कि ए दाग कित्थों लगा ते दूसरे दाग कित्थों लगदे जेड़े दाग ओ इक ओ नेड़े ठेके चो लगदे दाग दोष मुंह चलिया लाए पढ़दे हो ना दाग दोष मुंह चलिया जेड़े दोषां दे दाग लगदे ने मेरे गुरु नूं ओहदा भी पता है ते मेरे गुरु नूं इस दाग दा भी पता वा कि ए जे सोड़े झाड़दे आ जूठे बर्तन साफ करदे आ शरीर दे उत्ते पिया वा ए जेड़े दाग लगे ने ए जेड़े छिट्टे पए ने इन्हां छिट्टियां वालियां नूं ते मेरा कलगीधर पातशाह गलना लाउंदा गलना ते बाबा फरीद कहिंदा जदों मैं कदी नीवा होण दा जतन कीता ते मैनूं ए भुलेखा रहा कि किते मेरी पग ना मैली हो जाए मगर मेरी पागल रूह ए नहीं सी जानदी हां जी
1: गहला रूह न जानई सिर भी मिट्टी खाए
0: बाबा फरीद जी कहिंदे मेरी रूह गहली मेरी कमली रूह ए नहीं सी जानदी कि तू ते किना किते पग नू मिट्टी ना लग जाए ए ते सिर भी एक दिन जेड़ी सिर दे उते तू ए सुंदर पग बधी है ए सिर भी एक दिन मिट्टी ने खा जाणा मिट्टी ने कबर दे विच दग देना है जै सिर रच रच बांधत पाग सो सिर चुंच सवारे काग कहत कबीर सुनो मन मेरे यही हवाल होएंगे तेरे ए सिर दा मान ए पग दा मान करदा है ओ भोलिया ए शरीर भी एक दिन मिट्टी ने खा जाना है ए शरीर भी जां ते लकड़ियां ते सड़ के सवाह हो जाना है ते जां कबर दियां विच कितड़िया जुग वापरे इकत पया पास इट सराणा पोए सवण कीड़ा लड़ियो बोल सोली कीड़ा लड़ियो एक दिन ओ जिदन आना है जिदन कबर पुटी जानी है कबर दे विच तेनू लटा देना है उस कबर दे थले सराणा नहीं होना तेरे थले ते तेरे सिर दे थले इट रख देनी इट सराणा पोए सवण ना कोई थले तलाई विछाउणी तेनू मिट्टी उत्ते ही सवाउणा है मिट्टी नू मिट्टी उत्ते ही पा देना है इट सराणा पोए सवण सजना कीड़ा लड़ियो मास फिर कितड़िया जुग वापरे इकत पया पास किन्ने जुग बीत जाने ने तू मिट्टी विच मिट्टी हो जाना है इस मिट्टी तो ना डर ए ना सोच के जे मैं जोड़े झाड़ूंगा मेरी पग नू लग जाणगे सजना ए जोड़िया की धूड़ी जेड़ी है ना ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਬੋਲੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਹਮ ਪਾਪੀ ਵੀ ਗਤ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਤਨੇ ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ ਥਾਪੇ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਕਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਤਿਰਵੈਣੀ ਜਿੰਨੇ ਤੀਰਥ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਸਭ ਲੋਚੈ ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਸਾਧ ਕੀ ਧੂੜ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾ, ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆ ਧੂੜੀ ਕਰ
1: ਇਸ਼ਨਾਨ,
0: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾ, ਸਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਈਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਆਤਮ ਜਿਣੇ, ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂ ਕੇ ਜਾ ਕਾ ਸਤਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਏ ਆਤਮ ਰੰਗ ਸਰਣੀ ਪਾਵਣ, ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਣ ਸੰਗ। ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਓ, ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੇ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ, ਸੰਗ ਪਨੀਤਾ ਦੇਹੀ ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ। ਆ ਬੋਲੋ ਜਨ ਕੀ
1: ਧੂਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ,
0: ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜਨ ਕੀ
1: ਧੂਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ,
0: ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨ ਕੀ

0: त्यों बोला स्वामी कुदरत कवन हमारी, ज्यों बलावे त्यों बोला स्वामी कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की आत प्यारी, साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। तनता दे जोग जे जो तन गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह दे दर्शन दरदार करके तन हो रहे हो। भाई गुरुदास जी का एक पावन वचन सारे पढ़िए, सतगुर दर्शन धन है, सतगुर दर्शन धन है, सतगुर
1: दर्शन धन है, सतगुर दर्शन।

सारे आखो सारे ही हुण आपां व्यापार करन आया। एक बचन गुरबाणी दे विच मेरे साहब ने बहुत कीमती, वैसे तो एक एक बचन कीमती, गुरबाणी सारी हीरियां मोतियां जवाहरां नाल मड़ी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। एक शब्द बड़ा प्यारा मेरे साहब जी ने प्यारा बचन किया है, कहिंदे तां व्यापारी जाणीए। बोलो तां व्यापारी। व्यापारी शब्द बड़ा पछाणिया तुहाडा, तां तुसी व्यापार करन ते सारे ही आए हो। हर बंदा घरों व्यापार करन जांदा है, मगर जेड़ा घाटा खा के चल देना मेरे मित्रो गुरसिखो भाईओ, ते उहनू लोकी कहिंदे नहीं इहनू व्यापार करना आया ही नहीं, जेड़ा घाटा खा के चल। तां वा गुरमुख प्यारियो के कुछ तां व्यापारी जाणीए लाहा लै जाओ। लाहा व्यापारी ते तां ही किसे कहना लै भी इहदे प्यो ने 10 रुपया की रास पा के दिती सी, इह 10 दे नाल 100 कमा के लाया, बड़ा वड्डा व्यापारी है। मगर आपां नूं

0: सगल भवन के नायका, सगल भवन के नायका, सगल भवन के एक छिन दर्श दिखाए जी, एक छिन दर्श दिखाए जी, एक छिन
1: दर्श दिखाए जी, एक छिन दर्श दिखाए जी।
0: हाथ जोड़े तरले पाए, कुटिया विच बैठे कोड़े ने सिख ते प्रशादा सुट के चले गया, मगर एदे तरले ते एदियां बौड़ियां ओ जड़ा विण बोलिया सब कुछ जानदा है ना। एक भाई गुरदास जी ने वचन पढ़िया, आखो सतनाम श्री, कहिंदे जे रब नूं आवाज मारना हाथी ते कीड़ी, ध्यान दिओ हाथी ते कीड़ी, हुण हाथी बड़ा उच्ची कड़ाउंदा है ते कीड़ी बेचारी दी आवाज किन्नी है। ते भाई साहब नूं पुछया जे हाथी आवाज मारे कीड़ी आवाज मारे ते रब दे घर किहदी पहलों पहुंचदी, ध्यान दिओ किहदी पहलों पहुंचदी। ते भाई गुरदास जी कहिंदे ने कीड़ी दी पहुंचदी, क्योंकि नमाणी होके आवाज मारदी, क्योंकि ओ नमाणी होके नताणी होके आवाज मार दी है। इन्हें भी नमाणे नताणे होके बेनती की, हे साहिबा सारे पिंड वालिया कोल चरण हैगे, हाथ हैगे, अखां हैगियां, मैं ते गरीब एक आदमी ते मेरे मन विच भी हुण चाह पैदा हो गया है, दर्श तेरे की प्यास।

वाह वाह वाह वाह वाह, अच्छा ऐनी प्यास लग गई हो, ऐनी अंदर तड़प पैदा हुई हो, ऐनी वो देता बिना उदास हो गई है, शेर देने को तैयार है। आंधी हां सजना नैन हमारे प्रिया रंग रंगारे, मेरिया अखां उहदे रंग विच रतियां गईयां ने, 24 घंटे होर किसे नूं नहीं देख दियां, ये 24 घंटे गाउंदियां ने, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी बाहां तरला तुसी वी, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी।

सोहेला हो जन्म सोहेला हो ते फिर घर खड़े आने मेनू वखाया अजीबो करीब मंजा रखिया है मंजे दे उत्ते बलविंदर सिंह दी फोटो लाई फोटो दे कोल चोर रखिया है मैं क्या कदी आया है कहिंदा आया मेरे घर मैं क्या ओदे सामने ओदी फोटो दे चोर करदा सा कहिंदा जी ओदी सामने ओदी फोटो दे चोर करदा सा आखिर मन विच की छुपिया इन्हां लोकां दे शर्म भी नहीं आउंदी लज्जा भी नहीं आउंदी कि एक बंदा होके मेरी फोटो दे उत्ते कोई चौर करे चलो मगरों कोई अज्ञानी करे चवर तख दा मालक ते धरती ते इको या गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जे ते चौर हो सकदा है होर किसे चौर नहीं हो सकदा 1978 दे विच जेड़े 13 सिखा गुरमुख प्यारिया ने शहीदी पाई सी इसे करके पाई सी कि निरंकारी बाबा अपने सिर ते चौर करवांदा सी कहिंदे असीं नहीं वेखणा चौर हो सकदा है ते केवल गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते हो सकदा है ते गुरमुख प्यारे इहदी फोटो दे उत्ते उन्हें चौर रखे ते चौर करदा है ते मालक दे गुटके उन्हें मंजी दे थले रखे जांदिया दास ने पहले मारी फोटो भवां के उहदी चुक के ते फोटो सुट के मैं कहा सजना इस मंजे दे उत्ते ए चादर जिहड़ी नापाक होई है इहदी फोटो दे नाल इहनू चुक इत्थे पवित्र चादर विछा जे गुरु दा अमृत लैणा ही ते इस मंजे दे उत्ते हुण पोथियां रख जिथे अगे फोटो सी पोथी परमेश्वर का थान ओनू थां दे जिहड़ी पोथी परमेश्वर जोगी इस करके गुरमुख प्यारे ओ बचना है ते अंदरों अपने उस मालक लई कहना है इक छिन दर्शन दीजे इक छिन दर्शन दीजे इक छिन दर्शन दीजे इक छिन दर्स दिखाए जी इक छिन दर्स दिखाए जी इक आओ हुण जुड़िए नाम जप लो दो छिन फिर सतगुरु गरीब नवाज पातशाह मैं आप जी नूं बेनती कर दवा नामी ताई पहुंचण ला इको ही तरीका है नाम नाम ते नामी दो चीजां दा मेल आ जे नामी दी प्राप्ति करनी आ ते नाम जपना पैना है की करना पैना है नाम जपना पैना है रात दिन अपने रोम रोम विच भरना पैना है वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

0: आओ जुड़ो, आखो सतनाम श्री, नाभी चो आखो सतनाम, फिर एक बार खिंच के आखो सतनाम श्री, अपने परिवार दे भले लई आखो सतनाम श्री, पंथ दी चढ़दी कला लई आखो सतनाम श्री। आओ बाबा फरीद जी दे पावन बचन सरवण करिए। कल जो आप जी ने सरवण कीता सी उत्तो अगे मेरे गरीब नवाज पातशाह दीन दुनिया दे मालक दे बचन घर विच की बोलना है, दृढ़ कर लो, दृढ़ कर लो, चेता कर लो, चेता चेता कि कलयुग विच चेता ही भुल गया तां ही सब कुछ हो गया, परमेश्वर ते भुलिया, चेता ही भुल गया, चेता आवे उस पार ब्रह्म तां लगे ना, चित आ जाए, जित पार ब्रह्म चित आया सो घर दई वसाया, वह घर वस जाते ने जिथे गुरु दियां बचन चेते आ जाण। गुरमुखी बोलिया करो अपने बच्चों के नाल, घर विच अपने जीवन दे विच पंजाबी नूं लियाओ, मिठी बोली आ आप जी दी, सतगुरु कृपा करे। आओ सरवण करिए जी।
1: सतनाम श्री वाहे गुरु जी, फरीदा ए बेशक कंदला तरिया खंड लेवाड़।
0: आखो सतनाम श्री वाहे। बाबा फरीद जी कहिंदे ए जिहड़े दुनिया दे पदार्थ ने, ए जिहड़े दुनिया दे भोग ने, यह है ने यार दियां गंदलां। गंदलां समझते हो ना, गंदलां साग दियां गंदलां नहीं है तोड़दे हुंदे, उन्हां वल ध्यान जरा लै लो। ए दुनिया दे जिन्ने पदार्थवाद जिन्हों आपां कट्ठा करी जाने हां, साहब जी कहिंदे ए यार दियां गंदलां ने, यार दियां कादियां, ए विस गंदलां, बोलो ए, ते प्यारियां को लगदियां जी। कहंदे धरियां खंड लिवाड़, धरियां जितना कुनैन की गोली खानी होवे ते उहदे उत्ते मिठा चमकाया हुंदा ना। ए जिहड़े दुनिया दे पदार्थ ने अंदरों यैर ने, खसम वसार किए रस भोग, तां तन उठ खलोए रोग, मिठा करके खाया कौड़ा उपजया साद। ए हर चीज वेखण नूं मिठी लगदी, दुनिया दे भोग मिठे लगदे ने, दुनिया दे पदार्थ मिठे लगदे आ, माया जिन्नी घर विच आवे उन्नी चंगी लगदी आ। भैन भरा सज्जन मित्र, एक थां ते गुरु अर्जन देव साहब ने कह दिता, प्रभ स्वामी कंत वेहुणिया, प्रभ स्वामी कंत वेहुणिया, मीत सज्जन सब जाम, जाम मैने जम। एक परमेश्वर तो बिना जिन्ने मित्र सज्जन ने ना सज्जना, यकीन जम ने जम जम, तेनू खाण लई तेरे नाल चंबड़े ने। मेरे साहब जी इत्थे कहिंदे ने, फरीदा ए विस गंदलां, ए दुनिया दे पदार्थ जहर दियां गंदलां ने, मगर एक धरिया खंड लिवाड़, इन्हां दे उत्ते लिपन एडा मिठा करदा, पुत भी चंगा लगदा, धी भी चंगी लगदी, पैसा भी चंगा लगदा, दुनिया दा हर पदार्थ, दुनिया दी हर पदवी, दुनिया दी हर शै चंगी लगदी। मगर मेरे साहब कहिंदे जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणीए नाल चले सब कोए, चंगा नाव रखाए के जस कीरत जग ले, मगर जे तिस नजर ना आवई हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहां व्यापे जा को ओट तुहारी, बिन सिमरन जो जीवन बलना, ए सर्प जैसे अरजारी। अगे सुनो, नव खंडन को राज कमावे, दुनिया दे पदार्थ नवा खंडा दा कोई राजा बन जाए, मगर मेरे साहब कहिंदे अंत चले गो हारी, अंत हार के जाऊ, क्योंकि ए चीजा वेखण नूं सोहणियां लगदियां। हर चीज जे किसे नूं पदवी मिल जाए ते गुरमुख प्यारे उहदा जोड़े झड़न नूं दिल नहीं करदा, ना ना ना। तुसी की सोचदे कोई मिनिस्टर आण के इत्थे जोड़े झाड़ू, तुसी की सोचदे किसी गुरुद्वारे दा प्रधान कदी जोड़े झाड़दे वेख्या जे, किसी गुरुद्वारे दे सैकटरी नूं जूठे बर्तन साफ करदे वेख्या जे। तुसी सोचो जरा अपने अंदर झाती मारो, इथों आले ना समझ लो कि सानू कहण डिया। मैं समुचे गुरु नानक पातशाह दे घर दी गल कर रहा, मेरी हाथ जोड़ के बेनती, अपने अंदर झाती मारो। पदवी ने परमेश्वर वसार दिता, पैसे वाला कदी न्यो के जोड़े नहीं साफ करता। दुनिया ते जिड्डा वड्डा बंदा बन गया ओडा ही रब नालों दूर हो गया। ते मेरे साहब जी कहिंदे इन्हां ने सारियां दाता ने ए इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण वसारे, तुमरे ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਉਧਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਤਾਰਾ ਦਾਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਦਾਤਾ ਵਿਸਰਦਾ ਗਿਆ ਵਿਸਰਦਾ ਗਿਆ ਵਿਸਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਜੋਗ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ ਇਹ ਖੰਡ ਲਾ ਕੇ ਲੇਪਨ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠੇ ਭੋਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬੀਜਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬੀਜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕੁਝ ਤੇ ਬੀਜਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕੁਝ ਬੀਜਦੇ ਬੀਜਦੇ ਇਹ ਵਿਸ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪੰਡਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ 2 ਲੱਖਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਉਦਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜਿਦਣ ਉਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਕਾਰਨ ਧਨ ਸੰਚੀਏ ਰਾਤ ਕਾਰਨ ਫੇਰ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਤ ਕਾਰਨ ਸੰਚੀਏ ਮੈਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਰਾਤ ਕਾਰਨ ਧਨ ਸੰਚੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਕੇ ਚੱਲਣ ਹੋਏ ਭਲਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐ ਜੋੜ ਜਾੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹੁਣ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਗਰ ਸਵੇਰੇ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਭਲਕੇ ਚੱਲਣ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਨਾਨਕ ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੀਜਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਬੀਜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਬੀਜ ਕੇ ਖੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੋ

बेशुमार अथा अगणत अतुल ज्यों बलावहो ज्यों बलावहो त्यों नानक दास बोले ज्यों बलावहो त्यों नानक दास बोले तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी अन झंझ गात अन रंज बात अन झंझ गात अन रंज बात वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारे गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु
1: नानक धन गुरु नानक गुरु नानक धन गुरु नानक
0: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक
1: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक
0: सिद्ध कहिंदे ने असी सारी मंडली ने तुहानू धन कहा, हरिद्वार दे पांड्या ने तुहानू धन कहा, जगन्नाथपुरी आलिया तुहानू धन कहा, मुल्तान दे पीर तेरे चरणा ते डिग पए, मक्के मदीने वाले गढ़ बगदाद वाले तेरे चरणा ते डिग पए। आखिर राज की ध्यान दे, आखिर राज की शक्ति की। धन गुरु नानक पातशाह कह रहे ने सिद्धो खोजत खोजत अमृत पिया, बोलो खोजत खोजत लभदिया लभदिया ओ चीज लभ गई जिदे नाल फिर सारे मसले हल हो जांदे ने। खोजत खोजत अमृत पिया, अमृत पीता मैं जिदे करके जय जयकारा हो गई, जिदे करके जय जयकार हो गई। हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई, मन तन विच परमेश्वर वस गया। ते फिर सिद्धा ने अगला सवाल किया, ए जिहड़ा अमृत आ बड़ा कीमती आ? साहिब गुरु नानक पातशाह कहिंदे हां बहुत कीमती आ। आखिया फिर दिता की कीमत की दिती दे? ते बड़े प्यारे बचन गुरु नानक साहब ने जो उथे बोले, बड़े प्यार दे बचन ने, कहिंदे खिमा गई मन सतगुर दिया। अमृत नहीं उतरा मिलता जिना चिर मन नहीं अपने गुरु दे अगे अर्पण करना पैंदा, जिना चिर मन नहीं जीव आत्मा वेच देंदा। आ लोकी बहुते कहिंदे मेरा मन नहीं करदा, मेरा मन नहीं मन्या, मेरे मन की अजे परिपक्वता नहीं हुई। गुरमुख प्यारे हो, ए ते रोगी होए नू, एनू कोड़े होए नू, एनू विगड़े होए नू, मन बेच

से जुड़ के जुड़ के साहब गुरु नानक पातशाह कहणगे सौदा कर लिया परमेश्वर दे नाल उस वाहेगुरु परमेश्वर नूं अपना मन वेच दिता है ते आख्या जी दिता है ते कुछ लईदा भी आ कोई चीज दईए ते उहदे बराबर लईदी मेरे साहब गुरु नानक पातशाह कहिंदे हां सिद्धों मैं लिया है कहिंदे की लिया है कहिंदे मन दिता वा ते खिमा लै ली खिमा निम्रता लै ली उहदे कोलों नीवा पन लै लिया उहदे कोलों निम्रता लै ली झोलियां भर लिया मन दे के अज जदों मैं कई बार पढ़दे आ ना तुसीं भी पढ़दे ते मैं भी पढ़दा सिखां दा रोज पढ़दे हो मन नीवा ते मत उची इतना हो गया जी उल्टी गल चल गई हुण मन हुण उच्चा हो गया ते मत इतना नहीं लगता ध्यान दियो अपने अंदर झाती मार के वेखो मन करके ते असीं कोठे ते चढ़े आ मन करके ते साडे वर्गा है ही कोई नहीं मन दे विच ते जिन्नू भी वेखदे कहिंदे छड्ड इहदे वर्गा मैं इहदे नालों चंगा मन दे विच मन करके आपां रोज कहिंदे अरदास विच कि हे सतगुरु सिखां दा मन नीवा ते मत उच्ची होवे मगर कितना दी इह गल होगी साडे नाल वापर गई असीं मन करके हंकारी बन गए मत करके नीवे हो गए मत इन्नी नीवी हो गई आ भरा नूं भरा वेख के राजी नहीं सिख सिख दा की आ बोलो जी की आ जे गुरु गोबिंद सिंह साडा प्यो आ ते सिख दा सिख की लगदा है इहदे नालों दूसरे भरा ते कदी धोखा दे देणगे दूसरे भरा नूं ते असीं मन्निया है ना कि यह मेरा भरा है मन करके मन्निया ना यह ते गुरु ने मोहर कला के दिता कि एक पिता ते तू मेरा गुर हाई एक प्यो दी औलाद आ जिन्हें जिन्हें बाटे चो अमृत पीता वा कमाल दी गल उहदे प्यो दा नाम गुरु गोबिंद सिंह आ माता साहिब कौर आ उसे प्यो दा पुत उसे मां दा पुत एक दूसरे दा वैरी बनिया कदी रहत मर्यादा पढ़ के वेखो आखो सतनाम श्री वाहिगुरु मैं बाहर ना चले जावा सारे मात्र आप जी नूं कहूंगा जो सिख सिख दी चुगली करे बोलो जो सिख सिख दी सो तनखाइया सो तनखाइये दा मतलब हुंदा है सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी च जिस तरह गुरमुख प्यारे चौर कर रहे ने तनखाइये नूं कोई हक नहीं गुरु दी हजूरी च चौर करे ध्यान दियो जिहड़ा सिख सिख दी चुगली करे जिहड़ा सिख सिख दी चुगली करके काज विगाड़े ओह कड़ा प्रसाद नहीं विगा सकदा प्रचार सकदा ओह तनखाई है जिहड़ा सिख सिख दे दाड़े विच हथ पावे सो तनखाई है जिहड़ा सिख सिख दा मूंह खड़ावे सो तनखाई है मगर आपां अपने शीशे विच किते झात के वेखीए फिर असीं सारे ही तनखाइए इतना लगदा वा हे मेरे सतगुरु कदी कहना पऊगा हथ जुड़ के हम बारक मुगद आण हम बारक

जोगाद सच है पी सच नानक खुशी पी सच जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख प्रधान दासन दास कह जन नानक

मूरख मुगदा जन्म भया, परणवत नानक तिन की शरणा, जिन तो नाही विसरिया। परणवत नानक तिन की शरणा, जिन तो नाही विसरिया। परम सम्मान योग चवर शतर तख दे मालक, जुगो जुग अटल,

सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगादि सच खैति सच नानक खुशी भी सच